हेलो नमस्कार दोस्तों, आपकी आरजे डेबोरा फिर से आज सुबह आपके लिए लौट कर आ गई। इस पहली सेगमेंट में, इस फर्स्ट सेगमेंट में मैं आप सभी के लिए खूबसूरत गीत लेके आई हूँ। खूब सारी खूबसूरत गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ यहाँ पे FM 100.7 में आरजे डेबोरा के साथ जुड़े रहे, ताकि मैं आपके लिए खूब सारी हिंदी फिल्में गीते लेके आ सकूँ। ठीक है? तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपकी SMS वगैरह पढ़ा है, देखा है, तो उम्मीद है आप मेरे सेगमेंट में भी यहाँ पे आएंगे और मेरे लिए SMS छोड़ेंगे। ठीक है? तो पहला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सुबह लल्ला, क्योंकि इस सुबह आप सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि आपको सुकून मिले। ठीक है? और ये सुबह लल्ला गीत के साथ, ये जवानी है दीवानी का मूवी का गीत है, ये रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को हमने देखा था। तो ठीक है, सुनते हैं सुबह लल्ला।

माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको FM Zoe का गीत सुनना पड़ा क्योंकि मैंने थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब सच में सुनते हैं सुबह लल्ला। ये गीत आप सभी सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देती हूँ।

हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला गीत था सुबह लल्ला। तो आपको कैसा लगा? आप जरूर यहाँ पे मुझे संदेश भेज के, मैसेज भेज के बताइए, ठीक है? तो अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये जवानी है दीवानी मूवी का ही गीत है, कबीरा। ये कबीरा गीत थोड़ा सैड वाला सॉन्ग है, लेकिन बहुत ही अच्छा गीत।

है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्यारे श्रोताएं ये कबीरा गीत सुने आज सुबह, ठीक है? लेकिन आपके लिए मैं गीत तो बजाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके SMS आया है। आगते पाहियान आरजे डेबो डेबोरा कमिंग टू अ टाइप दिखलाओ दे ले का डी ई बी ओ आर ए एच नी दिखा कन हन सोई ले दो आ आरजे डेबोरा नमस्ते इले प्ले ले तो का पार पारी पु ओमेगा सांग ते आ वी कुंग ते आ जेलल जामा इतान का लाने फ्रॉम आगते पा अरुण ती आ ए आगते पा ता नेक्स्ट सॉन्ग कन लान गाला अरुण dedicate zong zong te ngai thatura ti zong zong te pon nuam ti ta kan lawngai thak ngei ka ringe te chuan in hei jil za mahian ye hu vu nuam don ve hello RJ de bo good morning Shuprabhat vo in society am lo zog de boy in fm zo oi moi ruin kanin chon le dial dial don ani mo next song itan duty nuam ule hatya je za mahi aron in lak zeidan hi o angi om ve thei nia ma se ni e o min lo ngai tha ula min lo ngai tha zel ula ti kha kan ron som du chewa ti khan kan ron som du chewa hemi next song ka play le tur hi kabira ye jawani hai diwani movie ka geet ye गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम स्पेशली हाँकते पा जे जामा ओमेगा सांगते या वी कुंगते या और बाकी मेरे दोस्त और मेरे परिवारों के लिए मैं देना चाहूंगी, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं कबीरा।

तो दोस्तों, हमने जो अभी गीत सुना था उस गीत का नाम था कबीरा। हेलो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था उस गीत का नाम था कबीरा। तो ठीक है, अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैयारा। ये सैयारा मूवी का गीत है। रोमांस और सैड सॉन्ग सब कुछ इसके अंदर है। तो ठीक है, और मिजोरम में भी हमें ये गीत बहुत पसंद था, हमने बजाया था हर हर घर हर जगह। तो ठीक है, मैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के लिए, सभी सभी सभी प्यारे श्रोताओं के लिए लेके आई हूँ सैयारा सैयारा गीत। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगे ये गीत। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले मैं मेंग मोइतेया का मैसेज पढ़ना चाहूंगी। मेंग मोइतेया ह्यान इन देबो नमस्ते ड्यूटी नुआमले अरुंती आ ए ड्यूटी नुआम तकिन गन मन थे ना दिहान मैसेज अरुं थोन छी ना गन लोम एम एम आ किचुआन इन हे सैयारा सॉन्ग तनिष्क बागची और फहीम अब्दुल्ला के आवाज में गाया गीत। चलिए सुनते हैं, आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देती हूँ सैयारा।

हाँ तो दोस्तों, आपकी आरजी रेबोरा फिर से लौट के आ गई। आपने जो गाना गीत सुना था वो था सैयारा। अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ रात लंबिया। जुबिन नौटियाल और आशीष कौर ने गाया है ये गीत। तो ठीक है, चलिए सुनते हैं रात लंबिया। उम्मीद है आप सभी प्यारे श्रोताओं को ये गीत अच्छा लगे। ठीक है।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था तरंग रंग दरंग करके हमने सुना था ना। तो एक बहुत ही अच्छा गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तेरे संग यारा, रस्टम मूवी का गीत है। यहाँ पे अक्षय कुमार और इलीना डी क्रूज को हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मैसेज मिला है, वी कुंगते ही अलाउ ती ताओ दे उंगे मोनी ओ कंस्यार रंगे के तो मीन सियार सक दोला व नी अंग कछार दे तो आ गलाव खोला तुकिन सुतले मीन कशो कथिप दे लका चुवांगसा निन वी कुंगते खांगे दम करन दिल हा छे नि से मेन लव से थ्यामला। आर जे देबोरा क्या रात आप अच्छे से सो गए सो पाए। अरुणता हिंदी ना तीन अरुणता पा मैं रात को बहुत अच्छे से सो पाई, तो ठीक है। पूछने के लिए धन्यवाद, ठीक है। विकुंगतेया, ये जो गीत है मैं विकुंगतेया के नाम देती हूँ, तेरे संग यारा। उम्मीद है विकुंगते आपको अच्छा लगे। नई नोम तितक की मिलाऊंगा इतना सकला इतान लिया लिया करो लाने ओ है ये।

0: तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था रस्तम मूवी का गीत, तेरे संग यारा। अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, दिल दिया गल्ला, टाइगर जिंदा है मूवी का गीत है, जहाँ पे हमने देखा था कैटरीना कैफ और सलमान खान को। उम्मीद है आप सभी को ये गीत अच्छा लगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक SMS पढ़ना चाहूंगी। जे जा महियान आर जे देबो असमा खोइलाया ने इन ओम इ हिंदी मन नाल के ती ए अरुण तिया तिलोम ओम थे खोप मै असमा चौन कन ओम लो ओ मासे ओले। ये दिल दिया गल्ला गीत में आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देना चाहूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम ये दिल दिया गल्ला।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन। और आज जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे, तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आप

हाँ तो दोस्तों, आखिरी गीत का समय आ गया है। इस खंड के लिए, इस सेगमेंट के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आपकी आरजे डेबोरा फिर से लौट के आएगी 11:20 में, यानी कि 11:20 में, ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी फिर से यहाँ पे FM 100.7 में आपके आरजे डेबोरा के साथ जुड़े रहे, ठीक है? तो ये गीत जो दिल दिया गल्ला है, मैं इसको खत्म करूंगी। या चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नया गीत बजाऊंगी, ठीक है? ये पिया और ए पिया, मेरे हॉस्टल के दिनों में ये मेरे फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। तो चलिए सुनते हैं पिया और ए पिया, इस खंड का आखिरी गीत, पिया और ए पिया। आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम, और भूलेगा नहीं, 11:20 को वापस आएगा, मैं फिर से लौट के आऊंगी, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं पिया और ए पिया।

हाँ तो प्यारे दोस्तों, आपके आरजे दिबोरा इस खंड के लिए फिर से लौट कर आ गई। आरजे आ गई के साथ आपने खूब सारी वर्शिप सॉन्ग सुना है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहला गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, चट्टान। ये भी एक बहुत ही सुंदर गोस्पल सॉन्ग है हिंदी का। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगे और आज का दिन आपका शुभ हो।

आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर। तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम

तो दोस्तों, आप सभी को उम्मीद है ये चट्टान गीत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये गीत बहुत ही अच्छा गीत है हमारा फेथ हेरिल रुना ते तान पोखान मो अंगे थक फो खा। तो उम्मीद है आप सभी को ये अगला गीत जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है। आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, और आपके SMS के इंतजार में मैं बैठी हूँ। आपका SMS मुझे अभी तक मिला नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे मुझे SMS भेजिए। तो ठीक है, अगला गीत हम सभी का फेवरेट सॉन्ग सुकून, ठीक है? तो क्यों ना हम सुकून बजाए। तो चलिए सुनते हैं सुकून।

हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को खुशी मिल गया होगा, ये सुकून मिलके, और सुकून भी मिल गया होगा क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था आप सभी को, सुकून का मतलब है पीस, ठीक है, कंफर्ट। तो उम्मीद है आप सभी को सुकून गीत सुन के सुकून मिला होगा। तो ठीक है, अगला गीत, इसका बीट थोड़ा अलग है, तू ही तो है, तू ही तो है ख्याल मेरा टाइप वाला बीट है ना। तो ठीक है, चलिए सुनते हैं तू ही तो है। ये अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा का मूवी है, तो चलिए सुनते हैं तू ही तो है। जैसे कि आप सभी प्यारे श्रोता है, सिर्फ आप ही है, तू ही तो है, ये गीत हम सुनेंगे एक साथ आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम।

हाँ तो दोस्तों, तू ही तो है सुनकर उछल पुछल वाला मूड आ गया मुझे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये धुरंधर मूवी का गीत है जो अरिजीत सिंह और अरमान खान ने गाया है। गहरा हुआ गीत है इसका नाम। तो उम्मीद है आप सभी को गहरा हुआ गीत अच्छा लगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप धुरंधर मूवी जरूर देखें। धुरंधर एक और उसका सेकंड पार्ट भी निकल गया है, तो धुरंधर टू। तो उम्मीद है आप सभी को ये गहरा हुआ सॉन्ग अच्छा लगे। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप धुरंधर मूवी देखें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं गहरा हुआ अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज में।

हाँ तो दोस्तों, अभी हमने गेरा हुआ गीत सुना था जो धुरंधर मूवी का गीत है, और मैंने आप सभी से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप धुरंधर मूवी देखें क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवी है, और पाकिस्तान में तो ये मूवी बैन भी कर दिया गया है क्योंकि, हाँ आप देखिए, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करूँगी, धुरंधर मूवी देखना ज़रूर क्योंकि हम इंडियन हैं और उसकी वजह से भी आप जरूर देखेगा। तो चलिए, अगला गीत मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मैसेज पढ़ना चाहूंगी। आपका संदेश मुझे मिला है जेललजामा हियानिन आरजे देबो नमस्ते नेक्स्ट सॉन्ग तान ले एफएम जो ओय रिमोय रुन गाय थतुते तान पो ओ सुकून हनल जिया ही अरुणती आ तू ही तो है ला इरोन सजो इन कशिया आंग वे खुप मई चुती रोलिन चन्न सत एरो चन्ना सदेव लेकिन लंगाया रोंटिया जे जा महिमी ही अरुण तिलोम थ्याम छीन खोप मैया और लेकर लो चंग ले देव दोनिया। ओ तो ठीक है, अगला गीत मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ये है जो तुम मेरे हो, अनुव जैन का गीत है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं सोने से पहले हमेशा सुनती हूँ, तो उम्मीद है आपको अनुव जैन का गीत पसंद आए, इसलिए ये मैं स्पेशली जेजामा और सुनने वालों के लिए उनका नाम देती हूँ। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं जो तुम मेरे हो।

हाँ तो दोस्तों, अनुव जैन की आवाज में जो तुम मेरे हो सुनकर मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत ही खुशी मिला और सुकून मिला। अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अलग ही धुन का गीत है, सूरज डूबा है। यहाँ पे हमने देखा था जैकलिन फर्नांडिस को डांस करते हुए, खूब मजेदार गीत है ये। तो उम्मीद है आप सभी प्यारे श्रोताओं को अच्छा लगे, और अपने सीट में बैठकर, अपने घर में बैठकर या फिर कार में ये सूरज डूबा है सुनकर उम्मीद है आप सभी को मजा आए। ठीक है, तो ये सूरज डूबा है अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में गाया गीत है। तो चलिए सुनते हैं सूरज डूबा है।

हाँ तो दोस्तों, मजेदार गीत सुनकर कैसा लगा आपको? ये जरूर बताएगा आप मुझे SMS में, ठीक है? अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तुम मिले, जो जावेद अली ने गाया है, ठीक है? प्रीतम और जावेद अली ने। तो चलिए सुनते हैं तुम मिले, जैसे कि मैं आज आप सभी प्यारे श्रोताओं से मिल रही हूँ, तो सुनते हैं तुम मिले।

हाँ तो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ बातें करके, आपके लिए गीत बजा के बहुत ही मुझे मज़ा आया, इसलिए मैं टाइम देखना भूल गई। लेकिन चलिए, अभी इस खंड के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं फिर से लौट कर आऊँगी 2 बजे, ठीक है, RGS चॉइस के साथ, यानी कि मेरे पसंदीदा गीत मैं लेके आऊँगी आप सभी के लिए, खूबसूरत गीत। तो ठीक है, मिलते हैं 2 बजे। उम्मीद है आप सभी RJ डिबोरा के साथ FM 100.7 में जुड़े रहे, ठीक है। तो चलिए, आप सुनते रहिए FM 100.7।

हाँ तो दोस्तों, माफ कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी। तो किस किस को, ये कौन कौन है राधा की तरह, ना हमें ये जानना है। आप संदेश भेजिए, मैसेज के इंतजार में मैं यहाँ पे हॉट सीट में बैठी हूँ, ठीक है। तो राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा ऑन द डांस फ्लोर हमने अभी भी किया है, लेकिन ये अगला गीत जो है खोया खोया है। इस गीत का नाम खोया खोया है, उम्मीद है आप लोग खोए ना रहे, लेकिन अच्छे से इस गीत को सुनिए। तो ठीक है, चलिए सुनते हैं खोया खोया। ये हीरो मूवी का गीत है, ठीक है।

तो दोस्तों, हमारा खोया खोया अब खत्म हो गया, ठीक है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर गाना, जहाँ पे आप उछलने लगेंगे। देसी गर्ल, ठीक है, क्योंकि मैं भी देसी गर्ल हूँ, आपकी आरजे डेबोरा देसी गर्ल है, इसलिए हम सुनेंगे देसी गर्ल, ठीक है। और अगर आपको कुछ गीत अगर चूज करना है, आपको सुनना है, तो आप मुझे संदेश भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, आपकी मैसेज के इंतजार में हूँ मैं। तो ये देसी गर्ल, चलिए हम सभी एक साथ अभी सुनते हैं।

0: हाँ तो ठीक है, आपको कैसा लगा देसी गर्ल गीत सुनकर? क्योंकि आप ही आरजे देबोरा, देसी गर्ल आपके लिए ये गीत बजाई थी, मैंने आपके लिए ये गीत बजाया था, ठीक है? तो अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं तुम ही हो बंधु, और आपके संदेश के इंतजार में मैं हूँ जे जा मते वी कुंग ते ते इन वन रे मे वे नंग मानी तान लिया उलिया तुम ही हो बंधु ती ही करोन प्ले डो ना। तो उम्मीद है आप सभी मजा ले इस गीत का, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं तुम ही हो बंधु कॉकटेल मूवी का।
1: Welcome to Sound Station. Let's enjoy the music world.

हाँ तो दोस्तों, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही सुन के उम्मीद है आप सभी को मजा आ गया होगा। तो ये आखिरी गीत होने वाला है, लेकिन क्या पता मैं फिर से लौट के आ सकती हूँ। लेकिन इस सेगमेंट के लिए मैं आप सभी को एक धूमधाम गीत वापस सुनाना चाहती हूँ। तो ये गीत मैं लेके आई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा ग्रूव, थोड़ा सा वाइब और बहुत सारी एनर्जी, ये लेके आई हूँ मैं, शिकी गीत। ठीक है, शिकी गाना, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। और ये इस गीत के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी, तो चलिए सुनते हैं शिकी।

था तो दोस्तों, शेकी शेकी सुनकर क्या आपने शेक लिया या नहीं, जरूर बताइए संदेश द्वारा। ठीक है, आपकी मैसेज के इंतजार में मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो अगला गीत, और ये आखिरी गीत होने वाला है इस खंड के लिए, इस गीत के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। फिर कब मिलेंगे ये पता नहीं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, तो ये आखिरी गीत मैं लेके आई हूँ, कश्मीर में तू कन्याकुमारी। ठीक है, मैं कश्मीर, आप लोग कन्याकुमारी। तो चलिए सुनते हैं कश्मीर में तू कन्याकुमारी, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फॉरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का भी आग्रह किया। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष भाग, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will arrive Seychelles in a short while on a three-day state visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's vision, Mahasagar, and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect the present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence, and its contribution to peacekeeping, maritime security, and multilateral diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Vice President C.P. Radhakrishnan said the strength of any economy across the world lies in the contribution of its MSME sector. Addressing an event on MSME Day 2026 in New Delhi today, he said that in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of the first generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high quality standards. Mr. Radhakrishnan added, the MSME sector has become the strongest pillar in India's journey of becoming a Viksit Bharat by 2047. The Vice President also argued the entrepreneurs to adopt the modern technology to further enhance the productivity, production and quality.
4: AI is also modern technology coming up. We have to adopt it. We have to use all the modern technology for uplifting our productivity, production, quality. We cannot keep away from the modern technological developments.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today announced that Bharat Taxi, the country's cooperative ride-hailing platform, will be expanded to 500 cities and towns across the country over the next 2 years. Speaking at the official launch of the Bharat Taxi, he said the initiative as a transformative step in the cooperative sector. Bharat Taxi aims to provide a fair and transparent mobility platform by making drivers referred to as Sarathis direct stakeholders. He said the model will ensure that drivers receive a larger share of their earnings while passengers benefit from safe and affordable services. Noted Tamil actor and director K. Bhagyaraj passed away in Chennai this morning following a severe cardiac arrest. He was 73. He was rushed to a private hospital after complaining of chest pain but could not be revived. The Tamil Nadu government has announced a state funeral in Chennai tomorrow. In the US Open badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे जवाबई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छी तरह से बीता होगा पूरे हफ्ते में। और पूरे हफ्ते में यही एक दिन मिलता है हमें आपसे मिलने का, तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे खंड में आप हमारा साथ देंगे। इस खंड में हम बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुने जा रहे हैं, जैसे जब तक है जहाँ, पाठशाला और रईस फिल्मों के गीत, स्वान स्वान स्वान, विकुंग ते मिंगमोई ते जे रजा मते पाते ओ एक्सेट्रा तिखा मिनलाउंग थाक।

चलिए आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। हितेंद्र दास असम से लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे जी, आई एम सिक रंतिया रन पंगसंग बैठे सा हितेंद्र अपो ही वो। हितेंद्र जी आप बीमार हैं ये सुनकर हमें बहुत ही अफसोस हुआ। उम्मीद करती हूँ आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, सही वक्त पर दवाइयाँ लीजिए और उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही जल्द फिर से ठीक हो जाएंगे। एंड हमारे साथ लगे रहिएगा आरजे जोबई के साथ और आप फटाफट ठीक हो जाओगे। ठीक है के वाला यानी ए कनी जवाब बोए लजा मका मिंग अंग निलो तकिन अलो जामी अलो निकरन ओ जेले जाम हे ए खै के वाला न रन अ रन तो न वेल लु तो कनी ओ नंग मा ही ओ एतिगे छानदोन जेले जाम ह्यानी लेलो गार्जे जवाल बोइते नंग तेही थराव लमा पन्न लाई इन एम मी इनकम जानी ड्यूटी हु नि चंग थे से मया लो इन एन फियांग से खतिया नुई हो और सुंगे सदनी कुल मु खाइ लो इ लो चंग पल लो गे ल तिन से जेले जामे आ नल क्यूट वे थे से मो भाई वे वे इनकम वंग वंग ला और रिल रिटर्न एन खानी रन ले ले वत दोन या तिका कन हन सा हाल लोप लोप टेंग से। तो चलिए नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग। एंड ये जो गाना हम

जा रहे हैं, स्पेशली हितेंद्र जी के लिए जो इस वक्त बीमार है। उम्मीद करती हूँ इस गाने को सुनकर वो ठीक हो जाए। एक बहुत ही प्यारा गाना मैं उनके लिए प्ले करूंगी, और ये होगा के जी की आवाज में सांसों की। एंड यस, हितेंद्र दास का दम लवा लो दम फत्थे नान कान्हे लाही कंथन सकेंगे।

chen ya o en ting i chan don sha da cha gom le mai chumi kan nga pa chung chuanin la moi tak mai kan ngai thak chun som le nga नेक्स्ट हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, ये होगा पाठशाला फिल्म से बेकरार।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे सवाल वही। वेल दोस्तों, आज का हमारा ये दूसरा खंड यही फिर से शुरू होता है और उम्मीद है आप अपने प्यार भरे एसएमएस हम पर फिर से बरसाना शुरू करेंगे। इस खंड में हम बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुनने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। एंड यस विकुंते ते दिन पुए ते जेल जा मत के वाल ते घाक ते पातले अंसविन सवाई खन सोते ने खम तो कर रिंगा कभी से या सुवांगी निंती तो चुलते इंती जो तो ते निया इंगे मिलो ngai thla pa te ni pei swa ni ne se mes te kam lo ton nu la la tan du zong ni mo te kha gan dei ni de cha ni khan te po kha ling victoria ngai ang a चलिए इस खंड की शुरुआत हम करेंगे बड़े ही मजेदार और प्यारे गीत के साथ। ये गाना सुनकर ही आपके होश उड़ने वाले हैं। आपको मैं उन दिनों पर फिर से वापस लेके जा रही हूँ जो कि जब आप हिंदी बॉलीवुड मूवी के बड़े ही फैन होते थे और आज भी हैं ये यकीनन। तो चलिए एक बहुत ही जाना माना खास गाना आप सबके लिए मैं पेश करूंगी। ये है जादू तेरी नजर।

चलिए, मैसेज आया है के वालंगे में आनी सवाल बोई गलो लो ले तो ए दुन तुम सुई प्ले ले तुर सोंग सोंग खा इतान निफिक रो सेवी कुंग ते तान स्वान सिपेर पो का फल लो अठीक थु छे मे रन ए बि कुंग ते हे के वाल या नि तिन तिन मो न्यूरोन ती छे ने ओरन रियल आरोन रियल दे ओरे छे ने आ इलो ngai kha em o ani te miron tia a vikung te hi kapate ani lawa हम नाम चीन एम चलिए इस खंड को हम आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा गाना होने वाला है ये भी दोस्तों. उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए. और ये है हमारे वन एंड ओनली जिसमें मनीषा खुराला एंड आमिर खान जी ने किरदार निभाया था. एंड बहुत ही ये 90s का बहुत ही प्यारा गाना है. उम्मीद करती हूँ मैं आपको आपके 90s की दुनिया में लेके जाऊं. चलिए सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम.

चलिए आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं. ओ हलायन मैसेज कितान रान रान रान थिंग वी कुंगतिंगे मे ह्यान आरजे जो माय सॉल बॉय लाइन आई टोल ऑफ द रोमा सी लाइन मेल मून नॉम सियरन टीवी ला वी कुंगते के लाइन मेल ही एंटीगिन ये मुंग ले ओ आ लाइव ये जो जो चीन तो ये एसएमएस ये रन तो ना ये तुम दे दे ओ मैं ओ यम लो दे दे सी ये रन तो दे हैं कन्नो लाइव ये चीन ना मारो जो हम दे दे टू टू का मौई तो चा चीन सी लो वा कुम्हिया निं सल दे वे तो ये नी ते हैं दीरा तेरो जेल जाम ते भी कु सॉरी के वाला ते कुम एम ते सु कन्ना निलाऊ ना यून मो चलिए नेक्स्ट हम सुनते हैं एक बहुत ही खास गाना और यस उम्मीद करती हूँ आपको ये गाना जरूर पसंद आए. एंड यस ये गाना है शायद आपको याद होगा बरसात फिल्म से जिसमें हमारे ये 1995 को रिलीज हुआ था जिसमें हमारे स्वीट चार्मिंग बॉबी देओल एंड ट्विंकलिंग ट्विंकल खन्ना जी ने किरदार निभाया था. इन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी एंड इनका शक्ल देखिए इस मूवी में इस फिल्म में कितना इनोसेंट था. चलिए इस इनसेंस के साथ एक प्यारा सा गीत इसी फिल्म का हम सुनते हैं हमको सिर्फ तुमसे प्यार है.

बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, बरसात फिल्म से था, है फिल्म ही और ये मोनम ही कतिया बरसात ट्विंकल खन्ना ले बॉबी देओल दे चन्ना खानिया अनमेल दे खाले नो पंगला स्वीट श्याम और न यंग बुक्सिया ला मोई बुक्सी इंग्लिश खोले मलम गणपन से लांग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत पसंद है, जिसमें हमारी दिव्या भारती एंड शाहरुख खान जी ने किरदार निभाया था। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए, और शायद इस गाने को सुनकर आप अंदाजा लगा भी दोगे कि ये कौन से फिल्म का गाना है। तो चलिए, दिव्या भारती जी और शाहरुख खान, हमारे खानों में खान शाहरुख खान जी ने जो फिल्म इस फिल्म में किरदार निभाया था, एक बड़े ही प्यारे गीत हम सुनेंगे ये आप सभी के लिए, ऐसी दीवानगी।

चलिए आपके SMS की ओर बढ़ते हैं। नल दिन पुया रन लंगता फल कोन वेंग लाई चंगे मे खान आरजे प्ले ले तुर खान नंग मा तान ले लोंगा इतलवे सोंग सोंग तान ले आरजे सोंग सोंग तान ले कच्छान ते वेंग शंग शंग मी ते आरसी अरिन मोय थ्लुआंग अमुआन सवा वाल पुया चिन चिन अलोमा ते पुया ते ले पापारी पू कुंग ते अमेंग मोय ते आ के वाल तुई क्वाला मी ते तान रन ते Oh, eh, din puya na ron tan sak zong zong ti hian in lo ngay ta kan bay say ni FM so is up min pasari hi aron chan hem aron ngay chin kop me din puya hian in FM so oi te hin lo ngay thave lo ang tite hi lao china so van chan di khan wholesale hian in aron tan sak vek zel may ni kan lom tak zet din puya min lo ngay thla zel tur khan in kan han in som ngal kan in chani okay dosto jise mene aapko बताया था इस खंड में जो है इस सेगमेंट में जो है मैं आपको 90s के जो बहुत ही प्यारे जाने माने गाने थे उन पर आपको मैं लेके जाने वाली हूँ जो कि आपकी यादों को भी ताजा करने वाला है और अब हम जो सुनने जा रहे हैं ये भी आपकी यादों को बहुत ही ताजा करने वाला है क्योंकि ये फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अन्नारी फिल्म से और शायद ये फिल्म तो आपने जरूर देखा होगा उम्मीद करते हैं चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही खास गाना हम सुनेंगे पास वो आने लगे

नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आकाशवाणी एफएम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आरजे जुआबोई। वेल दोस्तों, आज के लिए हमारा सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है एंड उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ देंगे अपने प्यार भरे एसएमएस के साथ। खंड की शुरुआत करेंगे बड़े ही रोमांचक गाने के साथ, जो कि है बदलापुर फिल्म से। यस, वन एंड ओनली जीना जीना।

ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके एसएमएस का इंतजार करते करते आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि है फिल्म वो कौन थी, और फिल्म के इस गीत के बोल हैं आंखें यू मिला के।

तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपके बहुत ही प्यारे प्यारे रोमांचक एसएमएस सामने आए हैं। सबसे पहले दिनपुर यानी आरजी प्ले ले तुरखा नमातान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान आरजी जोंग जोंग तान ले कछिया दिविंग शंग शंगमी तान ले पापारी पुतान कुंते तान मिंग मोई ते के वाल तान ले आरजी जोंग जोंग तान रंती आ दिनपुर यकन लोम एम ए ओ Ole, vi kung teng ngay mei hian, an ne mi u zwal boi gan in chen na ni hnai ta, in hil bi glong oi, sak mel ton chang ni hian, gung ngay zwal chun chi a, rinom kan tiam to a, rinom ze lang ron tia. Ah, vi kung teng ba han luang liam chin em, oh, gama pi sa han soi lang sa nin, eh, kalit tok te hian in kari ngamua, zwan sa nin, SMS thum lut tuk mei min pe oi ka sugar te hi ka nei don in ka sha ka lom lut tuk rinom tak khanin mi lo ngai thla zel don ya on chuan chuan chuan meng moi te hian in zwal boi tan le la din pe fel kon veng lai tan ran ti ah e din pui hei meng moi te an emiron than sakane kan pathi tan oi lo ngai thla ngai kha kan be sei bukani तो चलिए हम अपने इस खंड को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। दोस्तों हमारे साथ लगे रहिएगा एफएम जॉय 100.7 में, आपके साथ है आरजे ज़ोल बोई। नेक्स्ट हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि है वो कौन थी।

तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अराउंड 10 मिनट ही बाकी है. और जी लजा मंगे में यहाँ ने पैराग्राफ थी तो में अरन अरन इन बुन स्वाक लिया है इन खोम बांग ही पोल न संग संग ही दोंग वेट्री न मोआ गन नौ गाय थांग आर जे जो भी नमस्ते यान का ही एक अपिंग दा राइंग तीन बुनी तक यान ना जुक थोका आर जे जो वो इमो छूम ले रुआ ही कोप्तोर द्वान नंग तक इन अन कोप फे में मा नंग ने रो एफ एम जो या कोप्तोर द्वान सुकन निलो छियांग लोम तिरो तेरो नि हुआ हुआ नि शि छियांग लु तुक थत खा छु यान का चंग रेंग यान कबिंग आ थो dan dang dai tat sme ya next song itan si album tour lovin tile de si sentia le current di tsmo a tu me te te tan si a big real in kan tlin sak na pange ka nge pe lo ka nge la ma khan da kan lo qiu di ka ti chin mo Ray Ria Lovin lo come back late twa yang tse in kom zan lo va in kom zan hi tse soy sak do pon rim lo tru ta ngay om nu tlong tegin hong tse ron tia hei alai hol vela hiyan in di hiyan an pe hel vela to pa hi tsoan in ngay om mm nu a trang hi a hiyan na top li ngay ngay zhe le jay le za vay zumo ay in tu bray te tak tak lo ta ni tsu ing le ko le in kom khan in mason na lok na pek ngay zi po ka ring o jay le za am gat in ton le hu na tsoan in lo in kek kal la yung mi ro in bun rock le na sa don BL song to hianin duty nom ni RJ playlist tour song song kha veng lue kan thian ti song song tan le shipua ka thian ti song song tan RJ song song tan de ka pu her man le ka pu cha ma le ka ni ngur te ti tan ka kha ne ron ti pokani ni chan pa BL song to kan ban lon te reng em o in sms chiar hi nom hi ka di thri na mo ka kham lo thri na and Durgesh Naganpur se dikhte hain good evening RJ namaskar unhone mujhe good evening kya hai nagar nagarpur से दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगे रहने के लिए और आगे भी रहते रहिएगा एंड मैं आपको बता दूं कि ठीक 9:30 बजे फेसबुक में ऑल इंडिया रेडियो का जो चैनल है हमारा पेज है वहां पर लाइव होने वाला है तो आप हमारे साथ 9:30 में लगे रहिएगा दार क्वालिचन वे जानदार क्वालिचन वे है नहीं रिट्रेप तो फेसबुक लमक ऑल इंडिया रेडियो पेज लमक खान इन लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ दोनों ने सुमो इन आर जे चलो सेट में ngayom em may tour ka karon lang do na chuwam chwani inorik sup sup ka kan han base kan han in som hal ni chmo the chili is ki sa tage barte hain next time sunenge bahut hi pyara song chwani ne helahi sms mein ron ton tu song song te kan share chwa tak te le tu na milo ngai thatu song song te tan khanin whole set in kan han thangange oh ye hai badlapur film se ji karta